तू मेरे कम लग जा मैं तेरे कम लग जाना मैनू तू अपना कम दे दे ते मेरा कम तू ले संसार च ऐसा चल जाता है एक दूसरे दे काम आना जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकदा जेड़ा कर सकदा है ओनू जाके बेनती करा तू ए कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वो मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाहगुरु नाल पा के वेख मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है कर्ता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास तो हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते रह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए यह हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना किसी दूसरे का अभिवादन करना हो आदर करना हो भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां अरदास अरदास बेनती कर रहा हो अर्ज कर रहा हो मैं केवल अरदास जुड़िया होवां एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ए वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहिंदा ते इहदे वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे अपनी भगती नाल मेरी लिए एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु दा होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया वाहिगुरू दा कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा है घबराया हुंदा है डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है पसीने पूंजदा है सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा है वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी माण हुंदा है सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ

तेरा ठा भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम, मालक दा दर सोना है। एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है। सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है। दरा भीतर दर कवन लहे, ओ केड़ा दर है। जिथे भी साध जन बैठ के उन्हू चेते कर देने, ओथे ही दरा भीतर दर कवन लहे।

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चन कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चन कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चन पखार करम गुर सेवा बार जाऊं लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन नानक प्रेतिया।

हर हर चंद्र देव धारे, हर हर चरण हृदय उधारे, शिव स्वामी सदगुर अपना काज सब हमारे, बुंदा पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे, पुनदान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगमिय पारे, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिलका पार कछ न विचारे, नाम रतन

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परे। तकना के परमात्मा रूप कैसा

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

उस वेले वो अकाल पुरख किसी ना किसी ने इस संसार की पीस काल युग विच जद जुलम और पापा की अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतें अपछरा खुशी दे गीत गाए आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी धन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करे।

की बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आउणा सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने

भगतियां गई भगत भोले। जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिले विच लोग माया पा रहे ने, ओ लोटा किधर चला गया? ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पाउणी भुल गई, ना उताल रहा ना उराग रहा।

0: ए सुन बचन जुगी सरा।
1: भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाता।

मेरा रूप बिगड़िया होया भयानक है। मुबारक है जदों बंदे नूं अपने आप कोलों डर लगन लग पवे ना, ओ समा मनुख दे बदल जाण वास्ते बड़ा मुबारक है। मनुख दे चंगे बनन दे दिन आए समझते, जिस दिन बंदे नूं अपने अंदर फैले हुए औगण नजर आ जाण। धन गुरु नानक ने उन्हां औगणां ते सट नजर पवाई, कहिंदे मैं वेखदा, भाव धन गुरु नानक दे इस शब्द द्वारा असी वेखना है अपने अंदर, ते देखना है सारा कुछ बहुत कुछ नजर आ जाएगा जी। सारा कुछ नहीं ते बहुता कुछ नजर आ जाएगा। एक स्वान दो स्वानी नाल, एक ता मेरे अंदर कुत्ता पौंक रहा है, उदे नाल दो कुतियां पौंक रही है, लोभ कुत्ता, आशा ते तृष्णा उदे नाल रलियां हुई कुतियां। हर अमृत वेले हर दिन चढ़ते पलक पलक लफज जेड़ा है, एदा अगर आप बिल्कुल सही लफज अर्थ वास्ते लभिए, अंग्रेजी चा पर तू मारो कह सकते। अगला चढ़दा दिन, हर अमृत वेला हर चढ़दा दिन, जिस वेले मैं भगती दे मार्ग ते तुरना चाहना, मेरे राह विच भौंक भौंक के मैनू ए परेशान कर दे लोभ तृष्णा ते आशा, इन्हां दे भौंकण दे नाल मेरे अंदर हलचल पैदा हो जाती। पलके भौंके सदा बयाल, बड़िया भयानक आवाजा कढ दे, कूड़ छुरा मुठा मुरदार। पुराने समय च कुछ लोग जंगली कबीलिया चो ऐसे भी हुंदे सन, जेड़े ना ता लिबास चंगा रखते सन, ना उन्हां दे खान पहनन पीन की मर्यादा सी कोई, ना उन्हां दे डेरियां ते कोई समाजिक मर्यादा ही सी। जो मिल गया मार लिया खा लिया, जिन्हू वेखिया लुट लिया। आम तौर ते साडे लोग सासियां नूं भी ऐसा करके जानते रहे ने, हालांकि सासी कौम कुछ होर सी। ये राजपूतां दे ओ लोग सन जेड़े साहस करके हिम्मत करके बागी हो तुरे सन, पर क्योंकि थां थां फिरदियां होया, इन्हां लोकां ने भी चज नाल कोई टिकाणा ना बनाया, इन्हां दी मर्यादा भी खान पीण पहनण दी कोई चंगी ना रही, ते आम तौर ते समाज च इन्हां नूं भी उसे निगाह नाल वेख्या जाण लग पिया। जिहड़े असभ्य लोग सभ्यता रहित सभ्यताहीन लोग साडे समाज च पसरे होए सन, जिहड़े किसे समाज नूं किसे इंसानियत दे कानून नूं मनण नूं तैयार नहीं, गलत खान पीण गलत कम करन वाले, ते फिर लोकां नूं लुट्टण मारन। जो कुछ मिल जाए आम तौर ते उह बिल्ले न्योले जो कुछ मिल गया सब खा लैंदे सन। हुण उह छुरा भी रखदे सन, तीर भी रखदे सन, हथियार रखदे सन, हालांकि वीरता दीआं निशानियां, शस्त्र कोल होना बहादरी दा निशान है, लेकिन उन्हां वास्ते जिन्हां परपकार वास्ते वरतना होवे, जिवें तुहानूं महाराज ने बख्शे। ते जिहड़ा पराए बुरे वास्ते किसे दा नुकसान करके किसे नूं तरफा के जो स्वाद लैण वास्ते हथियार वरते जाण, ते फिर बड़े भयानक हो जाण। महाराज कहिंदे ने मेरे अंदर कूड़ दा छुरा मैं लक नाल बने। हराम खाना, क्योंकि महाराज ने पावन बाणी च बड़ा स्पष्ट किया है, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। मुसलमाना वास्ते जिस तरह सूर हराम है, हिंदुआ वास्ते जिस तरह गां दा मास हराम है, इसे तरह किसे दे हक ते निगाह रखनी, किसे दा हक मार के खाना, जिवें इन्हां दोहां कौमां वास्ते इन्हां दो चीजां नूं हराम मनिया गया है, इसे तरह इंसान वास्ते पराया हक हराम है। ते महाराज अगे भी कहिंदे गुर पीर हामा तां भरै जां मुरदार ना खाए। जे ये हराम दा मुरदार बंदा नहीं खांदा तां गुरु पीर भी बांह फड़दा, ते जे बंदा कहे मैं गुरु का भी बनिया रहा, गुरु की सांझ ही बनी रहे, ते मैं हक हलाल की बजाय लोगों का मार मार के खांदा रहा, तां गुरु वालों हामी भरे जाने की कोई गुंजाइश नहीं। महाराज कहिंदे ने इस तरीके दे नाल मेरे अंदर हक पराए की निगाह जिहड़ी है वह एक मुरदार खाने वाली गंदी बिरती। इस तरह मैं बड़ा मार खोरा भयानक रूप लेके फिर रहा, मैं पत की पंध मैनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं,
ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण दी रहनी दी कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं। तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनू बचा सकता ऐसे आसरे मैं एहा आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा। मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोकां दे औगण कढ के इस सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजियां दे औगण कढदा रहे अपने औगणा ते निगाह ही नहीं पई ते जिन्ना चिर अपने औगणा ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवे। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह दे पावन दरबार च आप जानदे हो साहिबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी। बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਰੋਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਪਣ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਏ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਗੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਿਕ ਜਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਮਲਮਾ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਹੜ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਕਿਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਗੰਧ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ ਹੋ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ
तेरा एक नाम तारे संसार मैं एह आस एह आधार मुख निंदा आखा दिन रात इस मुंह नाल मैं लोकां दी निंदिया करदिया जिंदगी बिता रहा दिन रात लोकां दी बुराइयां कढ़ियां पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोकां दे घरां विच वेखना ध्यान देना लोकां दे घरां वल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वल लेकिन केवल शरीरां तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे ने पराए घर वल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असीं धन भी लोकां दे घरां दा वेखने आ वड़ियाईयां भी लोकां दे घरां दीआं वेखने आ जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना बणे काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर ते बंदा कातल ते खूनी उदों बनता है जदों ए लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ए खराबियां बंदे कोलों बहुत गुनाह करांदियां ने साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनू नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया कि ओ ता लोक जिन्हां दी गल महाराज ने जिक्र कीता इत्थे ओ लोक ता बाहरों भी गंदे रहिंदे सन सफाई बाहरले जीवन दी भी नहीं रखदे बाहरों भी मर्यादा नहीं रखदे पर कई बार ऐसा भी होया कि आम बंदियां ने बाहरों जे बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना लिया संता वाला वेस धारण कर लिया साहब कहिंदे ने ऐसा भी होया फाही सुरत दिमाग विच आया है कि मैं लोकां नूं फसावां किस तरह लोक फसन किस तरह मेरी फाही विच किवें आउण मैं लोकां नूं किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेस बाहरों मेरा नेक इंसानां वाला साधां वाला फकीरां वाला वेस है औ ठगवाड़ा ठगी देस मैं ठग लोकां नूं ठगण ते लगा होया खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप च सियाणा बणदा भी बहुता मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालिक तेरिया रहमता ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर ओदा भी बुरा चितवे उस नूं हराम खोर कह देने आप खा के हराम करन वाला या बिना कीते खान वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जान वाला बंदा उसनू हराम खोर कहिंदे जेड़ा हलाल नहीं करता खादे होए जो कुछ उसनू प्राप्त है ओदा हक अदा नहीं करता साहिब कहिंदे ने मैं तेरिया दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरिया बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि तैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवेगा मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक दा यह शब्द साहिबा दी यह बाणी सानू अपने अंदर झात पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नूं जे अपने अंदर यह रोशनी मार के अपने

क्योंकि होर तां कोई तरीका लभिया नहीं, कर कर हारे हो अनक बहु भाती, मैं बड़े जतन कीते ने मेरा खेड़ा नहीं छड़दे, छोड़ा एकत हूं ना ही। एक बात सुन ताकी ओटा, ताकी नहीं कहना ताकी तकी, एक गल सुनी सी मैं ओदा आसरा तक लिया, ओदा आसरा रख लिया। ओ केड़ा आसरा केड़ा रखे है कि साध संगत मिट जाए, तेरे नाल जुड़े लोकां दी संगत च बैठण नाल ए हट जांदे। उंज वी कल्ला बंदा ही किसे बंदे दी या किसे दुश्मन दी मार थले आउंदा है, दो चार होण ते हमला करन वाला भी सोचदा है। ते जे रब नाल जुड़े, प्रभु नाल, गुरु नाल जुड़े होए बंदे चार बैठे होण, विकारां दी की हस्ती है के अंदर आ जाए, जुड़े होण सही। सतसंगत दे आसरे मैं सुनिया मिट जांदे ने, मैं आसरा तक लिया। ते फिर कर कृपा संत मिले मोहे, सत्संगियां विच रहण नाल, सत्संगियां च बैठ नाल, गुरु रूप संत दे बचन मैनूं प्राप्त होए, धीरज प्राप्त होया, दिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निर्भो, गुरु संत ने मैनूं निर्भयता वाला मंत्र बख्शिश कीता, इन्हां नूं वस करन वाला। गुर का शब्द कमाया, इस शब्द दे द्वारा

संभाले समनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी तहा सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जुहारी।

परत हन रूप कनी सुत कन पै लायत बारी खाए नानकन सा आदमी बदे जम पुर जाए सब।

मित्र हुंदा ही होए जेड़ा मनुख दा भला लोची, जेड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर और दुश्मन दी की लोड़। जेड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे ना थले बुरे पासे लै तो बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच निंदा चुगली विच गलत खेडां विच गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, ओ मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उन दा फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नूं ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे सुने सुनावे, ओनू असी मित्र समझ रहे हैं। हालांकि साहिबां ने पावन

तू बहुत सियाना है, बड़ा समझदार होगा। फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै, ताहू खरे सुजान वंजा एनी कपड़ी। जेड़े इन्हां पानियां चो लंघे होए ने किसे नवे पतन ते आ जावे, किसे नवे नदी दरिया ते पहुंच जावे, उथो लंघन दा मसला पैदा हो जावे ना। तू भावे किड्डा वड्डा तारू है, फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै जेड़े इस राह तो लंघे, पता नहीं किथे भंवर होवे, किथे पानी दी की दशा होवे। इस राह विचों लंघन वास्ते चंगा रवे जे तू किसे दारू नूं जेड़ा इथों लंघिया होवे उन्हूं पुछ लवे, इथों तू किवें लंघिया सी, की हालत है। इसे तरह धर्म दे मार्ग ते बंदा किन्ना होशियार ते चलाक, धर्म दे मार्ग ते उन्हां लोकां दे नाले गल कर लैणी। लालन रावया कवन गति री, तू किस तरह पति नाल प्यार कीता है, तू प्रभु नाल किस तरह प्यार पाया, प्रभु नाल तेरी सांझ किवें पक्की होई है, तू प्रभु नूं किवें पाए। सखी बतावो मुझे मतीरी, मैनू भी कोई मत दे, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी। जिन्हां सुहागणा ने घर स्वर्ग बना रखे ने, जिन्हां दे घर दे विचों खुशियां ते खेड़ियां दी खुशबू उठती है, उन्हां नूं पुछ लेना चाहीदा है इह खुशबू तुहानूं किवें प्राप्त होई, इस घर नूं स्वर्ग तुसां किवें बनाया। चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, ते जिन्हां घरां चो कलेश उठदा होवे, जिथे प्यार दी कोई सांझ ना होवे, उन्हां नाल गल करन दी भी की लोड़ है। मत उन्हां नूं कोई कुमत ऐसी मन च आ जावे, उन्हां दे कोलों कोई ऐसा रंग चढ़ जावे कि अपना भी जीवन खराब कर लईए। उन्हां दे नेड़े होईए जिन्हां दे जीवन च सुख नजर आउंदा, जिन्हां दे जीवन च आनंद नजर आउंदा। चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, ओ जेड़े संत भगत परवान जो प्रभु पाया, सही विचखण जंत जिनी हर ध्याया, जिन्हां दे बारे सुखमणी साहिब पढ़ने आ, जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभु सोए, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जो आप चल सकदा है धर्म दे मार्ग दे किसे होर नूं तोरन दी समर्था रखदा है, एहो जिहे बंदे नूं लभ के उहदे नाल मित्रता पाई सोभा दी लाहेवंदी रहिंदी। ते जिस दिन कोई मिल पैंदा है, धन गुरु नानक दा सवारिया है भाई मन सुख, जिस दिन महाराज शिवनाभ नूं मिले सी, ओ वर्तां पूजा करमां बेहद तरह दीआं रस्मां च फसिया है बंदा, जिस वेले भाई मन सुख दे दर्शन कीते हैरान हो गया, ए तां कोई वर्त नहीं रखदा, ए तां कोई पूजा नहीं पिया करदा, ए तां कोई पखंड नहीं पिया करदा, ए तां कोई रचना नहीं रची बैठा, मेरे सारे राज विच मेरे हुक्म अनुसार धर्म कर्म क्या चलता है, ते ए बंदा उस तो बागी होके इहदे नेत्रां च मस्ती है, किस तरह हो सकदी। उहनूं कहिंदा सजणा ए नेत्रां दी मस्ती, ए बोलां दी मिठास, ए जीवन दे विच हुलारा ते आनंद तैनूं कित्थों मिले। ते भाई मनसो कहिंदे ने गुरु नानक दी मत लै के, गुरु कोलों समत लै के, गुरु कोलों जज सेक के जीवन दा ए आनंद अपने आप आए, चरणां ते पै गया। कहन लगा सजना मैनू भी दस फिर ए आनंद मैनू किवें आ। भाई मनसुख फिर अपनी पूजा करवाउण नहीं बह गए, राह दस दिता। कहन लगे प्यार ओहदे नाल कीता सी, उहने बांह फड़ के अपने बना लिया, प्यार ओहदे नाल कर ते तैनू भी बांह फड़ के अपना बना लेगा। कहिंदा मैं लब्भा कित्थों, प्यार किवें करा। भाई मनसुख हस पए, कहन लगे महाराज शिवनाभ जे प्यार करके प्यारे नूं लभणा पए फिर कहदा प्यार कीता, तू प्यार करके प्यारा आपे खिचिया तुरिया, प्यार विच इनी खिच पैदा कर, ओ आपे तैनू लभदा फिरे, तू ओनू लभन ना जावे बल्कि तैनू ओ लभदा फिरे। ऐसी चिणग ला दित्ती, ऐसी रचना रच दित्ती उस राजे दे अंदर, धन गुरु नानक खिचे चले गए। राजे शिवनाभ दे प्यार ने गुरु नानक साहब नूं सगला दीप खिच लिया, कि ओ प्यार करना सानू भी आ जाए, या इहो जिहा प्यार करना

परमेश्वर दे नाम दा कदे निवास नहीं हो सकदा। नाम टिकेगा जिथे निम्रता है, जिथे आपा परमेश्वर प्रेम हो गया है, फिर नाम टिकेगा। जिथे अहंकार है, हौमे नामे नाल विरोध है, दोए ना बसे इकठाए। इसलिए जब हम होते

बाबा नामदेव जी नाम जपदियां जपदियां ऐसी बिरति आप दी ब्रह्म ज्ञानियां दी अवस्था प्राप्त हुई के ठाकरां दे इशनान करन लई जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई

में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है। हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावां, हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आ।

अंदर कौतक वरता रहे। ड्योड़ी च भाई प्राणा जी बैठे दर्शन करन चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन मगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी भाई पराणा मालक की रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे को नहीं सह, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा पातशाह, मैनू तुसी आग्या दे मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे भाई पराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना कर फिक्र कितों पै गई, तू फना कर ताकत कितों आ गई तेरे विच, कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहब हस के कहंदे ने भाई पराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दीआं ताकतां तेरे कोल आईआं ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवा मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है, तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रज़ा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढ़े ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जा हथ भाई पराणे दे मोढ़े ते रखिया। ओ जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया बड़ा मारिया, पर मालिक की बख्शिश की हुई धन गुरु अर्जन साहब की बख्शिश की सहनशीलता सदका फिर भाई पराणे ने हाए नहीं की, सी नहीं उचारी, वाहगुरू वाहगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तो पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जाए ना तो फिर हाए नहीं मुंहों निकलती, शुक्र मुंहों निकलता है।

पिंड दिया तुद आपे सारी रचना तू आप ही बनाई तुद आपे कारे लाया जेहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जेहा तुद तुर लिख पाया जो रचना बना के जो लेख लिख के तू भेजा है ओवे कोई पिया चलद पंच तत् कर तुद सिष्ट सब साजी सारी सृष्टि पंजा तत्ता दे हिसाब तू बना दी कोई छेवा करे हो जे कुछ कीता होवे किसे कोल हुंदा ता है नहीं छेवा तत् इक ना सतगुर मेल तू बुझावे जिन्हां नूं सतगुरु मिल पिया उन्हां नूं सोझी आ उन्हां ने इस गल नूं समझ लिया ते जेड़े मन दे पिछे लगदे पए ने ओह रोंदे पए ने साहिब कहिंदे ने जिन्नी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना इक मनमुख करे सिर होवे मनमुख रोंदे ने।

इस संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

पावन पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां ओदी महान कृपा नाल, सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात का होके लोग मथे टेकते ने, हैं ये क्यों? बंदे का सुभाव है, बंदा किसी की वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करता, किसी की प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करता। कबीर जी नूं ए सजा दिती गई कि इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पाके गंगा विच छुड़ दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझदे ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुट्टन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओदा जिक्र कीता है। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। आओ

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनूं सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नूं तू आप ही जानदा है, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं ते मेरे औगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुंदर विच पानी है इतने साडे विच औगुण हैं, कृपा कर

देते अवगुण हमारे दया करो किछ मेर पावो डूब दे पत्थर तारे जोड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगे काती प्रणवत नानक हुक्म।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख